जनमलाया जाए रे लाल तोरारा ओ मेरा घर ताई कई सको दुख बढ़दाए आई सको ओ मेरा घर ताई कई सको दुख बढ़दाए आई सको दीना दीना जिंदा की सारा खुने वायरस दीना दीना जिंदा की सारा खुने वायरस हरे राम बचो हरे राम मुखले बचो हरे राम आसे घर चुकाम मुखले बचो हरे राम आसे घर चुकाम।

फिर दिया। गंगा माया बुढ़ासकी का आवाज में सजी को निके मीठो लोकप्रिय श्लोक सुन्न भाई। वहां आज यह धरती में हन वहां को आवाज हमी सुंद वहां को आत्मा को चीर शांति को कामना करो। श्रोता हम प्यारो जन्मभूमि हम प्यारो संस्कृति हम भूगोल यहां का कला साहित्य संस्कृति में हम जीवन है। मानस माटो को अटूट संबंध और नाता नहीं देशभक्ति है। आपू जन्म को माटो सब प्यारो लगता आपो संस्था और संस्कृति सब का प्रिय हो देश को मायालाई नहीं देशभक्ति देश प्रेम व राष्ट्र प्रेम होने गई। मानस जो समाज में हुर्कन्छ बढ़ बांच समाज को संस्कृति ऊ सब हुर्कदे आमी मौलाई आते ये संस्था और संस्कृति हुर्काउँदै बढ़ाउँदै संरक्षण करते लिया हमारा ज्येष्ठ जनहर ने संगसंगे गलाहरूलाई संसदीय बोके आए। यसै कला र गलाले भरिएका दोलखा सुनसानी निवासी भगवती शिवाकोटी र उहाँकै बहिनी दोलखा मेलु पौवटी निवासी लक्ष्मी विमलीको आवाजमा रहेको यो निकै मिठो श्लोक तपाईँ सामु सम्प्रेषण गर्दैछु।

0: सामुदायिक पहुँच का लागी संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचार को सहयात्री।

0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

प्रत्येक साताको शुक्रबार राति 8 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपरान्ह 4 बजेको समाचार पछि कार्यक्रम गीति कथा। सुन्न नभुल्नुहोला रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीति कथा।

0: अनुरोधक दीप जनवन कार्यालय दोलखा।
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

एघारत बाट मति प्रसाद सागबाट आज विक्रम सम्बत 2083 साल अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सन् 2026 मे 29 तारिक ज्येष्ठ 15 गते शुक्रबार त्रयोदशी तिथि अब स्तुति गरौं।

नारायण अब यो बताई नहीं भैया को श्री बृहद नारद यह पुराण पुरुषोत्तम महात्म्य को यो तेरहों अध्याय करीकन कति कुरा को विस्तार कर सुन्न सौनक आदि भनिकन सौनक आदि नाम का 88,000 ऋषि का प्रति गुरु सुतजी ने बताने भो सही नहीं कथा लिया नारायण नारद लाई बताने भो सही नहीं कथा लिया यद्यपि वाल्मीकि नाम का जो ऋषि राजा दृढ़ धन्य बताने भो सैनिक कथा लिया हमारा आदरणीय श्रोता महान भाव में लेकर यह कथा प्रस्तुत राजन अब ते मौका में यहां के भाई सलाह देखें जस्त अब यो अब तेरी अंतिम में दुख लाई जो काटे त्या पी गि आप राज्य भोग कर पाने हे महाराज युधिष्ठिर भनिकन परमात्मा प्रभु भगवान ने गईकन जब तेरी कामिक नाम जो वन में गए तेरी पांडवर भन्न भो महाराज युधिष्ठिर यहां किसम को जो पुरुषोत्तम भगवान को व्रत कर इत्यादि जो उपदेश दिभ अब पुरुषोत्तम भगवान को जो व्रत का प्रभाव ले सारा संपूर्ण कुरा जो कट्टा हुई जो तो जो शक्ति बढ़े जान महाराज हे व्रत भन्ने चीज तस्तो पूजा भन्ने चीज तस्तो जो गायत्री जप भन्ने चीज तस्तो ये के हुए मैंने शक्ति भैया चीज शक्ति बढ़ाने पर्च शक्ति घटना हुई त्यांखे हरेक किसम के करीकन उतापटी महाराज युधिष्ठिरलाई परमात्मा प्रभु भगवान कृष्णचंद्र ने करीकन करो तस्तो उपदेश दिभ वहां जो पुरुषोत्तम को जो व्रत करो लगि सके त्यां 14 वर्षसम जो दुख भोग करें त्यांखे उतापटी जो आखिरी में त्यां आएर राज्य करने काम करू हे महाराज हेन जस्त अब तिमीलाई एउटा सानो एउटा इतिहास पनि ल्याएर म जो बताउने काम गर्दछु हेर नारद भनेर नारायण भन्नुहुन्छ अनिखेरि कस्तो त भनेछले भने जस्तै राजा चित्रधर्म नामरेका जुन राजा थिए चित्रधर्म नामरेका जो राजा थिए त्यही चित्रधर्म नामरेका जुन राजाले अनि राज्य गरेर बसिराखेकै थिए अनिखेरि उहाँका राजा उहाँका छोराको त भनेछले भने दृढधन्न नामरेका जुन हो राजा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँबाट दृढधन्न नामरेका जुन हो राजा हुनुहुन्थ्यो अनिखेरि अब उहाँले उहाँ बढ्दै बढ्दै बढ्दै बढ्दै जानुभयो गइसकेपछि त्यहाँबाट उहाँले के गर्नुभयो त भनिसलाई भने अनि त्यो उहाँले हरेक किसिमले गरिकन धनुर्वेदहरू जो पढ्नुभयो विभिन्न विभिन्न किसिमका जो कर्महरू गरिसकेपछि उपरान्त त्यहाँबाट चित्रधर्मा नामरेका राजाले पनि

नगाड़ेरा पशुपति गुज्जेश्वरी दक्षिण काली समझेरा पशुपति गुज्जे काली दक्षिण काली समझेरा।